दिल वालों के इस मेले में मौज मना लो यारो, कस्टम बस्टम कचर बचर सबको गोली मारो। दिल वालों के इस मेले में मौज मना लो यारो, कस्टम बस्टम कचर बचर सबको गोली मारो। मुक्त मिले जब दिल की बुटिया फिर सदमे को झेलो, मजा ले लो। कल की बातें कल पे छोड़ो, आज मजा ले लो, मजा ले लो भाई। घुमा रुमा गेलो।

बांधो तेरे, खिले खिले मुरझा ना जाए ये फूलों से चेहरे, इन फूलों को गूंज के प्यारों सर पर बांधो तेरे, दुनिया तुमसे खेल रही है तुम दुनिया से खेलो, मजा ले लो हाँ, गुम्मा रुम्मा गुम्मा रुम्मा गुम्मा रुम्मा खेलो ओ खेलो ओ खेलो ओ गुम्मा रुम्मा गुम्मा रुम्मा खेलो ओ खेलो ओ खेलो ओ कल की बातें कल पे छोड़ो आज मजा ले लो, मजा ले लो।

मेला उसके बाद झमेला, बाबूजी बेचारे कुली, बीवी बच्चे ठेला, अरे ठे ठेला ठे ठेला ठेला अरे ठेला अरे ठे ठेला। शादी एक बरस का मेला उसके बाद झमेला, बाबूजी बेचारे कुली, बीवी बच्चे ठेला, अरे शादी शादी का

अब आटा घर में आज नहीं है आटा, खूब चलेगा बाटा। कह गए बेटा जानी वाकर, अरे वाह जाने वाकर, वाह वाह।

0: में
1: अच्छा है जो रहे कमारा, क्या रखा है प्यार प्यार प्यार प्यार में।
2: You are Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran.

तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो, ये अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा अमर है। तुम अपने आप को समर्पित कर दो, ये ही सबसे उत्तम मार्ग है। जो इस मार्ग पर चलता है वो भय चिंता शोक से मुक्त रहता है। जो कुछ भी करो मुझे परमात्मा को अर्पित कर दो। ऐसा करने से

0: अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है, वफादारी का शिकवा क्या जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है।
1: अरे क्या

अच्छे अच्छे गाने आप सुन रहे हैं, है ना। और इस बार पारस मनी फिल्म का नाम है और गाने का बोल है चोरी चोरी जो तुमसे मिले। खबर अख्तूर लता जी एंड मुकेश।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू।

पुरानी यादों के साथ और सुरीले गीतों के संग बनता है उजाला रेडियो का कार्यक्रम।

सुन वालों, अगर आप बैठक गाना पसंद करते हैं तो अगला गाना आपके लिए है। उजाला रेडियो पर आप सुनते हैं एक मस्त गीत।

दोस्तों समय आ गया है आज का बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम समाप्त करने के लिए। उजाला रेडियो पर हम जल्दी फिर मिलेंगे। अब आज का हमारा आखिरी बैठक गाना नहमा गीत हम आपको सुनाने को जा रहे हैं।

दोस्तों हम यही उम्मीद करेला कि आज बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया, आप आनंद लिए हैं। अब आ गया है वक्त आज के लिए आखिरी बैठक गाना।

कितने ही बार दयानिधि ने, कितने ही बार दयानिधि ने संसार को आके उबार लिया। जब जब धरती पर धर्म घटा तब तब प्रभु ने अवतार लिया, तब तब प्रभु ने

उजाला रेडियो पर आज की बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ये शाम अब समाप्त होने वाले हैं। सभी लाश को धन्यवाद। अब और एक आखिरी बैठक गाना आप सुनने को जा रहे हैं।

उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला बिंद नाउ उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

अफसोस करोगे, अफसोस करोगे, जरूर अफसोस करोगे। स्टेविन बेन की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं। जोहेब हसन, मैं जा

जाना जिंदगी से न जाना, क्या क्या गीत है। उजाला रेडियो पर इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए उजाला.nl।

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश Voormaar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

0: amore mio, dove sei tu? Hey, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया आशा भोसले की आवाज के कितने भी तू कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम ये प्यार ना होगा कम सनम तेरी कसम No matter how much injustice you do with me, I bear it with a smile. उजाला रेडियो का पैगाम है मिक्स मार्क सॉन्ग्स आपके खिदमत में नशर है और इस बार आप सुनिए सुरों का बादशाह संगीत का फरिश्ता पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब की आवाज़

0: 1971 ka film An Milo Sajnase. मुकुल दत्त का फिल्म आन मिलो सजना से आपने भी सुने हैं। सुर का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज, आनंद बख्शी का कलाम और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: तेरे लिए आज चलता है खुशियों से दिल का पैमाना।
0: सितारों का सितारा उजाला रेडियो का पैगाम है और रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामल काश के वास्ते आप सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 10 और 3 के दरमियान फोन कर सकते हैं 9204090807 या तो ईमेल द्वारा आप भी हमें खबर भेज सकते हैं और पता है info@ujala.nl। मिक्स मैक्स सॉन्ग्स में फिल्म का नाम सागर, यूं ही गाते रहो।

मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। सुनने वालों की खिदमत में आपका खादिम शहीद गुलजार का नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। यह है यू आर उजाला रेडियो का पैगाम। हम आपकी खिदमत में कुछ ही देर के वास्ते हाजिर है लेकर कुछ मिले जुले संगीत। हमारे सभी श्रोताओं को एक बहुत ही शुभ दिन, बहुत ही मुबारक दिन अर्ज की जा रहे स्टूडियो से। यू आर की पूरी टीम की ओर से आपके दिन शुभ हो।

ना रे सिलेक्शन पेश की गई है आतिफ असलम की आवाज में, ओरे पिया तरस जिया, ओरे पिया तरस जिया, ओरे पिया मेरे तरस जिया, क्यों तू ना आए रे, नैना तरसे पल पल बरसे, तुझे बुलाए रे। आतिफ असलम की आवाज, स्टेशन है यू आर उजाला रेडियो।

हमारा फोन का नंबर आप जरूर नोट कर लेना, आत्मनिज राशि पर फोन का नंबर है 02040908 07। इसी रेडियो इसी फोन का नंबर पर आप डाल कर सकते हैं रेडियो के क्षेत्र पर हर काम का आज के वास्ते, आज नहीं तो कल के लिए 02040908 07 पर आप डाल कर सकते हैं। इट्स यू आर उजाला रेडियो का पैगाम, कुछ मिले जुड़े संगीत आपकी खिदमत में अर्ज किए जा रहे हैं। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं, जिस हालात में आप भी हैं, आप बीमार दुखित या तो लाचार है, आपकी खुशी के वास्ते भगवान से प्रार्थना और अल्लाह से दुआ है। प्रोग्राम को आप सुनते रहना और सुनते ही जाना। लीजिए ये सिलेक्शन भी आप सभी के वास्ते अर्ज है।

जैसे आप सुने हैं, हम आपको कुछ मिले जुले संगीत मिक्स मार्क सॉन्ग सुना रहे हैं। एक गोल्डन ओल्डी सिलेक्शन आपने भी सुने हैं, और साथ ही साथ हम आपको आज का पैगाम में भी लोकल सिलेक्शन सुनाने वाले हैं, जैसे कि एक बहुत ही फेमस गायक निजाम वाजिद हुसैन की आवाज़ में।

निजाम वाजिद हुसैन की आवाज आप अभी सुने हैं। आंखों में इंतजार के बादल बरस गए, बिन तुम बिन हम, अब क्या बताए। निजाम की आवाज में आपने भी प्रोग्राम में

ओ तेरे मेरे बीच दिल के बीच में अब तो सदियों के फासले हैं। हाँ तेरे मेरे दिल के बीच में अब तो सदियों के फासले हैं। यकीन होगा किसी के हम तुम एक राह संग चले हैं। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। सुर का बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में आपने भी सिलेक्शन सुने हैं।

यू आर उजाला रेडियो का पैगाम है, हमारे सभी सुनने वालों को एक बहुत ही शुभ डिनर्स किए जा रहे हैं। मिक्स मार्क सॉन्ग्स हम आपको सुना रहे हैं और फोन का नंबर एडमिनिस्ट्रेशन पर है 024-09-0807। खादिम का नाम शहीद गुलजार।

0: छोड़ा।
1: अजी आपसे क्या बताए कि तेरे लिए मैंने सबको छोड़ा, तू ही ने मुझे छोड़ दिया सारे के। 24/7

बम्बई से आया, बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात भर खाओ पियो, दिन को आराम करो, लेसी के घर

The most sensational and the best leader in broadcasting. You are Ujala Radio का पैगाम आप सुन रहे हैं. सभी को एक बहुत ही शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज है. फोन का नंबर एडमिनिस्ट्रेशन पर 020-409-0807. इसी नंबर पर आप डायल कर सकते हैं रेडियो के क्षेत्र पर हर कामकाज के वास्ते, जैसे कि इश्तहार, जरूरी खबर, खास फरमाइश, मृत्यु समाचार या मौत की खबर के लिए आप डायल कर सकते हैं एम्स्टरडम में सोमवार से लेकर

उजाला रेडियो है ये सुनने वालों, और इसी के साथ आरंभ किया जा रहा है प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। गीत और गजल की दुनिया, गीतों और गजलें के साथ। इस प्रोग्राम में बातें हम बहुत ही कम करते हैं ताकि इत्मीनान से आप लुफ्त उठा सके गीतों और गजलें से। तो चलिए, पहला कलाकार जो आज का प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे तो वो है मेहदी हसन साहब।

जान दीजिए, हर चेहरा है प्यारा चेहरा, बाग में फूल है और कमरे में तुम्हारा चेहरा। पंकज उधास जी की आवाज में आप गजल को सुने।

नहाना अपने आप को अब पाइए जनाब, मेरी गजल को साथ लिए जाइए अब जनाब। चंदन दास की आवाज में आप गजल को सुने। उजाला रेडियो का प्रोग्राम है ये गीत और गजल की दुनिया, और आप जो सुन रहे हैं तो ये हमारी खुशनसीबी है।

गुलाम अली की आवाज़ में आप गज़ल को सुने। सुनने वालों, उजाला रेडियो का प्रोग्राम है ये, गीत और गज़ल की दुनिया। और अब चलिए एक बार फिर प्रोग्राम में हिस्सा ले रहा है पंकज उधास जी।

जी, बाग में फूल है, कमरे में तुम्हारा चेहरा। पंकज उदास जी की आवाज में इस गजल को आप सुने, और आज का प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया में एक आखिरी गीत पेश है।

ये उजाला रेडियो है, इतवार की रात है और यहीं से अब आरंभ किया जा रहा है गीत और गजल की दुनिया। वही प्रोग्राम जो हर इतवार की रात आपकी खातिर बना रहा हूँ, जिसमें बातें कम करता हूँ ताकि गीतों और गजलें जो हम सुना रहे हैं उससे आप लुफ्त उठा सकें। तो आज भी आप तैयार हो जाइए इत्मीनान से सुनने के लिए वही प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया।

0: तारीफ करते हैं तो इसमें क्या बुराई है, खुदा ने अपने हाथों से तेरी सूरत बनाई है। अनूप जलोटा जी की आवाज में प्रोग्राम में आज पहली गजल आप सुने हैं।
1: तो इसमें क्या बुराई है, तेरी तारीफ करते हैं, तो इसमें क्या बुराई है।

जिंदगी का जनाजा उठेगी, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। चंदन दास की आवाज, उजाला रेडियो, गीत और गजल की दुनिया।

हुआ हूँ कि छूने से बिखड़ जाऊंगा, अब अगर दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। गुलाम अली की आवाज में आज का गीत और गजल की दुनिया प्रोग्राम में

आया, हाँ कौन आएगा यहाँ, कोई ना आया होगा। जगजीत सिंह की आवाज, उजाला रेडियो का प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया, जो आपके साथ और हजारों लोग सुनते हैं।

किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह, जगजीत और चित्रा सिंह से आप सुने। अब एक बार फिर पंकज उधास जी हिस्सा ले रहा है।

प्रोग्राम का पहला भाग में आखिरी गजल पेश है। अभी कुछ ही देर में प्रोग्राम का दूसरा भाग भी सुन लेना।

नाना नानी दादा दादी काका काकी मामा मामी फुआ फुफा बहन और ए भाई तो भी सुने है तो उजाला रेडियो।

0: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
1: हाँ तो
0: मैं कुछ कह रहा था,
1: बोलो ना, भूल गए?
0: अरे हाँ भूल गया। चलो चलो घर चले।
2: आई आई आ, सुकु, सुकु।